हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

से। गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग।

प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों को जहां जहां रेडियो अमन 88.4 कर की आवाज सुनाई दे रही है, तमाम सुनने वालों को इस मॉर्निंग प्रोग्राम में वेलकम जिया यानो बखेर रगले एलन मसेलन मरहबा हबीबी यहा यहा भले करियो। मुझे कहते हैं सुबह दोपहर तारीख और इस वक्त आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम।

So today is 26th July. The day is Sunday and the year is 2026. चलते हैं सबसे पहले टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज के न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉप स्टोरीज शामिल हैं. आज है 26 जुलाई. सो चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज की न्यूज़पेपर की टॉप स्टोरीज.

जी गाइस, ये थी आज की न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज। चलते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में एक पीरियडिक सॉन्ग की जाने। प्रोग्राम के स्टार्ट में सुनते हैं ये पीरियडिक सॉन्ग। और इस पीरियडिक सॉन्ग के बाद वापस जल्दी आते हैं। कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहेगा।

welcome back to all. You are listening to Morning Rub program, and this is me, Subha Dubar Tariq. और बिल्कुल आप सबको पता है कि मॉर्निंग रब प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इतवार के दिन आप सुन सकते हैं 8 से 9 बजे तक.

अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम में सवाल की जानिब। आपसे शेयर करते हैं आज के प्रोग्राम में सवाल, और सवाल वही सवाल हैं जो मैंने पिछले प्रोग्राम में पूछा था, लेकिन पता नहीं आजकल हमारे लिसनर जो हैं उनको क्या हो गया है। जब मैं सवाल पूछता हूँ, सवाल लेकर आता हूँ प्रोग्राम में, कोई सही जवाब नहीं देता, पता नहीं क्यों। और सवाल बिल्कुल वही सवाल है कि कौन है जो दिन को सोता है और रात को जागता रहता है। जी बिल्कुल वही सवाल है, और सवाल यह है कि वो कौन है जो दिन को सोता है और रात को जागता रहता है। तो देखते हैं कि सवाल का सही जवाब कौन देता है, यह तो बाद में पता चलेगा। और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू दे सकते हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैसेज करने के तरीके बहुत ही आसान है, अपने मोबाइल के राइट या क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां पे जाके कैपिटल वर्ड में टाइप कीजिएगा आर ए के टाइप करने के बाद दीजिएगा स्पेस, स्पेस देने के बाद अपना नाम और अपने इलाके का नाम, और लास्ट में सवाल का जवाब, जो कौन है जो दिन को सोता है और रात को जागता रहता है। और फिर ये मैसेज आप सेंड कर सकते हैं 8583 पर, यानी 85-83 पर।

चले प्रोग्राम के स्टार्ट में सुनते हैं एक सॉन्ग, सॉन्ग की जाने बढ़ते हैं। सो एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग, और इस सॉन्ग के बाद वापस जल्दी आते हैं।

0: सो गाइज सॉन्ग भी एंजॉय कीजिएगा साथ साथ, और आपको ये भी बताता चलो के कहते हैं कि इल्म के साथ अमल भी बहुत जरूरी है। इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इल्म इंसान को सही और गलत, अच्छाई और बुराई, हक और बातिल में फर्क करना सिखाता है। इल्म की रोशनी इंसान की सोच को वसीह करता है, उसके किरदार को बेहतर बनाता है और उसे कामयाबी की राह दिखाता है। लेकिन गाइज सिर्फ इल्म हासिल कर लेना काफी नहीं, बल्कि उस पर अमल करना ही उसकी असर रूह और हकीकी मकसद है।
1: नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े।
0: गाइज अगर कोई शख्स बहुत कुछ जानता हो मगर अपनी जिंदगी में इस पर अमल ना करे तो उसका इल्म दूसरों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है लेकिन खुद उसके लिए उसका फायदा महदूद रह जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जानता है कि सच बोलना अच्छी बात है लेकिन खुद हमेशा झूठ बोलता है, या उसे मालूम है कि वक्त की पाबंदी जरूरी है मगर वो खुद हमेशा देर से पहुंचता है, तो उसका इल्म उसकी अमली जिंदगी में नजर नहीं आता। ऐसी सूरत में इल्म अपनी असल तस्वीर को देता है। गाइज जब इंसान अपने इल्म को अपने किरदार, गुफ्तार और अमाल में शामिल कर लेता है तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छा मिसाल बन जाता है। ऐसे लोग अपने इखलाक, दयानतदारी, इंसाफ, सबर और हुस्न सलूक से मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाते हैं। इनकी बातों से ज्यादा

सो गाइज हमेशा हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी अच्छी बात सीखे सबसे पहले खुद इस पर अमल करें। इलम की असल खूबसूरती इसी में है कि वो इंसान की किरदार इखलाक और जिंदगी में नुमाया नजर आए। जब इलम और अमल साथ होते हैं तो इंसान न सिर्फ खुद कामयाब होता है बल्कि दूसरों के लिए भी हिदायत खैर और भलाई का जरिया बन जाता है। सो गाइस एंजॉय कीजिए सॉन्ग जस्ट फॉर वन मिनट्स। वापस जल्दी आते हैं सॉन्ग के बाद।

सो बिल्कुल, ईरान की जानिब से भी बयान सामने आया है। दुश्मन के हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रहेगी, सरबरा ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा ने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक दुश्मन मुकम्मल तौर पर हथियार न डाल देता और बच्चों के कत्ल का बदला न लिया जाता।

ओह माय गॉड, किसी ने सवाल का जवाब दिया है, सो देखते हैं कि ये जवाब किसने दिया है। चले आते हैं आपके मैसेजेस की जानिब, बल्कि मैसेजेस शामिल करने से पहले भी चलते हैं एक और सॉन्ग की जानिब। प्रोग्राम में शामिल करते एक और सॉन्ग, सो एंजॉय कर लेते हैं एक और सॉन्ग प्रोग्राम में।

अच्छा जी, सॉन्ग भी एंजॉय कीजिएगा, टाइम कम है और साथ साथ मौसम की सूरतहाल से भी आपको आगाह करते हैं। तो मुल्क भर में बारिशें छतें बैठ गई हैं, दरिया बिफर गई, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का अलर्ट भी जारी किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस पंजाब में मुतअद्दिद हादसात, शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, सिंध में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा, जबकि हाइबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और फ्लड के खदशात के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा वक्फे वक्फे से। लाहौर में मुसलसल और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने जानी नुकसान और मामूलाती जिंदगी मुतासिर कर दी है।

प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ, कहां से हैं। सो बिल्कुल फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो, सलाम तारिक भाई, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, आई एम मुस्कान खटक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुस्कान खटक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आपको भी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो अगेन मुस्कान हटक, स्पेशल सलाम टू हफ्सा हटक और ग्रेट मलिका, आईना हटक, अक्सर हटक, बाकी ऑल लिस्टनर के लिस्टनर को सलाम, बाकी ऑल लिस्टनर को सलाम, माशाल्लाह। चले थैंक यू सो मच मुस्कान हटक, आपने ज्वाइन किया।

और जी नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो सलाम एंड गुड मॉर्निंग तारिक भाई, मैं मुनाहिल हूँ, हमने मामों के घर जाना है। अच्छा माशाल्लाह, पिछले शो में आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ना नेवर, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। सबको सलाम, थैंक यू सो मच मुनाहिल, आपने ज्वाइन किया लेकिन आपका जवाब गलत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा जी, सवाल मैंने प्रोग्राम में ये पूछा है, सवाल गौर से सुन लीजिएगा कि वो कौन है जो दिन को सोता है और रात को जागता रहता है। थैंक यू मुनाहिल, आपने ज्वाइन किया लेकिन आपका जवाब गलत है। ट्राई टू अगेन। और जी नेक्स्ट तारिक भाई, आपको नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे सलोमीना, इट्स मी यतीम लड़की तारिक भाई, वेलकम टू द शो। चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यतीम लड़की, आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट शाह फैसल फ्रॉम बन गुल, गुड मॉर्निंग पखीर दागलिसलामुना, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच शाह फैसल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग। अच्छा जी नेक्स्ट मैसेज आया है, मुस्कान हटक ने मैसेज किया है, इट्स ओके नो मैटर, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मुस्कान हटक, थैंक यू, कोई बात नहीं, ठीक है। जी नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो, इट्स मी यतीम लड़की, सलाम टू, अच्छा सलाम टू मेरी जान तारा हटक, तारा आंटी सॉरी, ग्रेट मलिका नादिया दाविया उजाला मुनाहिल और माइक गुलाब जामन चुटी महविश मारी अरमान जोनी हटक चुटी अक्सा गुलशन आईना आपागुल। चले थैंक यू सो मच यतीम लड़की, बहुत शुक्रिया, सबको आपके सलाम पहुंच गए, बहुत शुक्रिया। और जी नेक्स्ट सेफुल्ला द मीठा हेलोना सलामुना, जवाब दे ना ना ना ने उर, थैंक यू।

थैंक यू सैफिला, आपने ज्वाइन किया मीठा हेल, मीठा हेलो से, मीठा हेल से थैंक यू। और जी नेक्स्ट इट्स मी सदफा फ्रॉम कैरेगर, हेलो एंड हाय, नाइस ब्रदर, हाउ आर यू, आई लाइक योर शो, योर क्वेश्चन आंसर इज ना ना ना ने, और स्पेशल सलाम टू लाडली जी, मेरे ओके गुड लाइफ, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया, आपके जवाब भी गलत है। और जी नेक्स्ट सलामोना एंड सहार पखेर तारिक भाई, जवाब ना ना ना, आपका जवाब भी गलत है, उजाला हचक ने जवाब दिया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका जवाब भी गलत है।

झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है आप सच बोलकर हार जाओ. ओके ओके ब्रदर, खुश रहो. चले, थैंक यू सो मच सदफा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया. नेक्स्ट तारिक भाई, सवाल का जवाब है ना ना ना एवर नहीं. सवाल गौर से सुन लीजिएगा. सवाल मैंने प्रोग्राम में ये पूछा है कि वो कौन है जो दिन को सोता है और रात को जागता है. वो कौन है जो दिन को सोता है और रात को जागता रहता है. थैंक यू सो मच उजाला हटक ने ये जवाब दिया है. थैंक यू उजाला हटक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. और जी नेक्स्ट मैसेज, इसमें यतीम लड़की तारिक भाई ऑल सिस्टर से कहूं कि मैं ऑल से बहुत प्यारी प्यारे छोटी छोटे बच्चों के फ्रॉक्स स्वीटर्स वगैरह बनाती हूं तो

थैंक यू सो मच छोटी एक साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट, बिल्कुल सुपर क्लासिक एंड सुपर फाइन शाइन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और रकीब पटक ने फिर से मैसेज किया है, कह रहे कि रकीब पटक द मलिक सिंह जी ना चले। थैंक यू। अच्छा जी, किसी ने सवाल का जवाब दिया है लेकिन आपने मैसेज तो किया है, जवाब तो दिया है लेकिन इसके साथ आपने अपना नाम नहीं लिखा है। पता नहीं किसने जवाब दिया है, सो ये कौन है, ये कौन है, नाम नहीं लिखा है इसके साथ उसने। तो जल्दी जल्दी टाइप कीजिएगा मैसेज और अपना नाम मैसेज में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किसने जवाब दिया है, कहां से जवाब दिया है। और ये जवाब बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, सलाम तारिक भाई जान, कैसे हो? मैं इकरा वजीर फ्रॉम जानी हेल। भाई जान प्लीज प्ले का रहा था। अच्छा जी चले, मैं ट्राई करता हूँ। इकरा वजीर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आपने सॉन्ग की फरमाइश की है, अभी तो टाइम कम है लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए मैं जरूर प्ले करूंगा। ठीक है, थैंक यू इकरा वजीर फॉर ज्वाइनिंग।

और जी नेक्स्ट मैसेज, दो शॉर्ट मैसेजेस आए हैं तारिक खान, जवाब पता नहीं क्या लिखा आपने, नेक्स्ट मैसेज भी आपने इसी तरह किया है तारिक खान, जवाब पता नहीं किसने मैसेज किया है, कहां से किया है, लेकिन आपका ये जवाब गलत है। ठीक है, रकीब अचक वॉन्स अगैन, पावरफुल पीपल, पावरफुल पीपल आर लाइक एगल्स, दे ऑलवेज फ्लेल ऑन। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रकीब अचक, आपने ज्वाइन किया। और रकीब अचक फिर से कह रहे हैं कि लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड जर्नी, सो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। राइट, थैंक यू रकीब अचक, बहुत शुक्रिया। और जी नेक्स्ट मैसेज, किसने मैसेज क्या है, आई एम सो पता नहीं, सॉन्ग की फरमाइश आपने की है और केरी की बीजीएम में प्ले करें। चले मैं ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट तारिक मामो, डेडिकेटेड फॉर यू।

और कहिए कि आप नाराज नाराज से लगते हैं, कोई कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, आप कीमत बताओ मुस्कुराने की। मुस्कान ता सलोम, मैं छोटी अक्सर फ्रॉम करक। चले थैंक यू छोटी अक्सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। टाइम भी कम है, जस्ट 3 मिनट बाकी है और फिर मैंने इजाजत भी लेना है। सैफुल्ला ने फिर से मैसेज किया है और जवाब दिया है, ना ना ना आपका जवाब गलत है। एक और मैसेज आया है, सवाल का जवाब है ना ना ना गलत। एक जवाब मुझे मौसूल हुआ था लेकिन पता नहीं किसने जवाब दिया था, और इस मैसेज में उसने अपना नाम नहीं लिखा है। एनी हाउ बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, सुपर तारिक वजीर, हाउ आर यू, बहुत बिजी हूँ, शो साइलेंट सुनती हूँ, वेलकम। वेलकम मोहन हचक, और जवाब है आजकल के कह रही है कि आजकल की लड़कियां हैं जो सारी रात ड्रामे देखती रहती हैं और दिन को सोते हैं। अच्छा जी चले थैंक यू सो मच। और ये मैसेज किसने किया, ग्रेट मलिक ने मैसेज किया है लास्ट में, बहुत शुक्रिया ग्रेट मलिक आपने मैसेज किया। सो नो कमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वेलकम मुस्कान छोटी अक्सा, एंड शी इज वेरी वंडरफुल, एंड और ग्रेट मोन यानी यतीम लड़की, ये चीजें तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बेबी के लिए भी बनाओ, और बीजेम इज सो क्यूट एंड मैं ग्रेट मलिका। चले थैंक यू ग्रेट मलिका, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जल्दी जल्दी आपके मैसेज शामिल करते हैं, टाइम कम है। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हम खान फ्रॉम, पता नहीं क्या से मैसेज किया है, फ्रॉम सिर्फ आपने लिखा है। तारिक सर वेलकम, एंड पखीर रागले, एंड शो सो स्वीट मेरी तरह, एंड ऑल फ्रेंड को सलाम, एंड सवाल का जवाब है ना ना ना गलत। थैंक यू रेहाम खान मैसेज करने का, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, सुपर डुमेल, सुपर पावर डुमेल ग्रुप ना जी वजीर तारिक खान जी वजीर दा जो मो देर दाई। अच्छा जी, ना ना आपका जवाब गलत है जी वजीर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया लेकिन आपका जवाब गलत है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी वजीर, आपने ज्वाइन किया डुमेल से।

और जी नेक्स्ट छुट्टी अक्षय फ्रॉम करक, थैंक यू अक्षय आपका भी बहुत शुक्रिया। दिस मी जी एम वजीर फ्रॉम सरकीखेल तरखाना मिर्जपुर पश्तू के पश्तो से सवेत व्याई पश्तो से जागजाई वेत व्याई का सदी लिखने थी थैंक यू जी मजीर आपने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया

मैंने दिया है जवाब में छोटी अक्षरा फ्रॉम करक। अच्छा, आपने जवाब दिया है, लेकिन दोबारा मैसेज कीजिएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने दिया है या किसी और ने जवाब दिया है। थैंक यू। दिस इज मी जी वजीर अगेन। तरीकान आंसर ना ना ना गलत। ठीक है, एक जवाब मुझे किसी ने दिया था लेकिन उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं किसने जवाब दिया था। आसमा सी मंडान बनो, अस्सलाम वालेकुम तारिक चाचू, हाउ आर यू, शी इज अ नाइस। जवाब जवाब बनो जुबान के, क्या लिखा आपने? अच्छा जी, ना ना ना, आपके जवाब भी गलत है। अच्छा जी, प्रोग्राम में मैंने ये सवाल पूछा था, चले आज जवाब बताते हैं और टाइम भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। सवाल मैंने ये किया था प्रोग्राम में कि वो कौन है जो दिन को सोता है और रात को जागता रहता है। सवाल का एग्जैक्ट जवाब है चौकीदार मामा। ठीक है, ठीक है, सवाल का जवाब है चौकीदार। सो अब मुझे दीजिएगा इजाजत, टाइम खत्म हो चुका है, मिलते हैं आज 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम में। ठीक है, 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।

अच्छा जी बिल्कुल प्रोग्राम से गप सप लगी जी, प्रोग्राम अभी ठीक कर एक बजे पर रही। और प्रोग्राम की बात खुशली खुशली संदर्भ हम लिखी ठीक है। और प्रोग्राम के भी तो मैसेजेस और व्हाट्सएप से कॉल्स दब हम प्रोग्राम के सभी कॉल बिल्कुल कवाले से बदे प्रोग्राम से 0927291292 बने यानी पीटीसीएल नंबर बने कॉल कवाले से और पीटीसीएल नंबर से कम दावा रेडी दाई 0927291292 मैसेज कवाले से और मैसेज तरीका हाँ दे दे असोना मोबाइल के बलोट से राइट या क्रिएट ऑप्शन दे जब तक मैसेज लिख गई अगली जी बलोट शैल देखिए बोली के घटखर उसे आर ए के चिकल हम बोली के ब्याह वेर के स्पेस स्पेस से बात खबर लो मखबल इलाके नो ब्याह एसेंट के पर 8583 बने यानी 85-83 बने कल हाँ तो मैसेज रोशी प्रोग्राम से मैसेज जरूर मिली जी जी माशाला मौसम चुके ढेर जबरदस्त है और ढेर इलाके से बरुम शो दें चकी बहुत जबान मौसम चेंज शो दें गर्मी जोर चुके कम शो दें

हाँ जी बिल्कुल वर्जी दे संदर्भ दरबाने प्रोग्राम से और भी दवा संदरा और यही कहना चे टगी ब्रगी बना के शाह बिल्कुल और भी दा संदरा चे चापोवास के दो ब्रेहना मेल पवोस की दवा संदरा दो

अच्छा जी वेच सलाम तारिक भाई वालेकुम सलाम डेरा डेरा मनाना नोम देना दे लिखे लवा सिर्फ सलोम और लर्जे बता दे हम शकड़ी जक अच्छे सलोम सरा सरिता सोम मेला विजिशा डेरा मनाना थैंक यू अच्छा जी मैसेज कर दे इसमें यतीम लड़की तारिक भाई ग्रेट मलिका से कहो फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी का नाम बताओ और आपकी और ग्रेट मलिका से कहो कि आपके आपकी बेबी बॉय है या गर्ल है एज कितना है उसका खाजी सही डेरा मनाना थैंक यू मैसेज बोले यतीम लड़की डेरा डेरा मना शाह अगेन यतीम लड़की सलाम एंड वेलकम तारिक भाई इट्स मी यतीम लड़की सलाम टू तारा मलिका उजाला मनाहिल नादिया राबिया छोटी महविश छोटी अक्सा गुलशन आईना और मुकद्दस सदफफा असमसीफ डॉक्टर आयशा एंड सलाम टू ऑल

अच्छा जी सही कॉल तरह तरजी प्रोग्राम से कॉल चुके मिले अभी कसी कल बने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सुख दिखे जना दे असला जी सुख बर की किम जना आवाज दे डिज या स्लोर दरी में फातमा खबर है कि वे करक ना नो खबर बन खुद ना पेजा वो दे डिज स्लो दाए खजीदा माता दे आवाज वले स्लो अरसी खजी यो मिनट्स गो रमा

0: हाँ नन बता से रहता कवे डेढ़ और बाद हम कॉल कर दे उतासो लकी कॉलर हम ही मजीद कॉल बचे मिला बोले हाँ नशे मजा के जमुन से टाइम दे खत्म शुभे और उतासो बा मुंग सरा नन का कड़े लैंग्वेज के युवा युवा संदर युवा बदल बखा वहाँ मुंग दवाई खा
1: बिल्कुल
0: जी
1: खुदा सड़क पर जोड़ से।

0: रेडियो अमन 88.4 की नशरियात हमारे साथ रहिएगा।
1: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बच्चियों, सिर्फ एक हदीस आपको सुनाता हूं, सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे और आप मुआशरे के बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अरबों ऐजा कानत फीक मा दर्रक मा फातक मन दुनिया, कि मेरी उम्मत चार बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। हिफ्ज अमानतन, सिद्क हदीसन, हुस्न खलीकतन, इफ्फतन फी तुमतन। चार बात फरमाया कि मेरी उम्मत किसी को धोखा न देना, सुभान अल्लाह, किसी को धोखा न देना, बद्यांती न करना। दूसरा फरमाया सिद्क हदीसन, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुना कर सकता है, दो नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो झूठ ना बोलो, सच बोलो अल्लाह के वास्ते। तीसरी बात फरमाई हुस्न खलीकतन, अपने अखलाक अच्छे कर लो। और अच्छे अखलाक का एक लफ्ज है बर्दाश्त, लोगों की बर्दाश्त करो, नेगेटिविटी बर्दाश्त करो। चौथी बात आपने फरमाई इफ्फतन फी तुमतन, कि रिज़्क हलाल कमाओ, हराम ना कमाओ, हराम चीजों का कारोबार ना करो, उससे कभी चैन नहीं आता।
0: करक और उसके मजाफात में अजान जोहर का वक्त हो चुका है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।